नष्टेयत नएङतशोने आ याय आ याय आ ए मंग मंग कतरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग

केवेनष्टेयाता न एङता सोवाने आ याय आ याय आ हे मंग मंग कोतोरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कोतोरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया शेक्या।